राज साज हम पर जब आयो यथा सकत तब तर्म चलायो। कलगीधर पातशाह बड़ा सुंदर लिख दे ने, राज साज हम पर जब आयो, ए राज पाठ दी जिम्मेवारी जद मेनू मिली यथा सकत तब तर्म चलायो, जिन्ना भी हो सकया मैं इसनू अगे तोरन दी कोशिश कीती।

उठी छिछ इच्छं कदा मेद जोरं मनोमत मटकी कान फोरन। कहने नी कृपाल चंद उदासी जी ने आए जरनैल हयात खां दे सिर अंदर ऐसा कुटका मारे आ, जद कुटका उदे सिर दे विच वजे आ, साहब कहने ने मैं ठीक कह रहे हैं, उठी छिच इच्छन कदा मेज जोरन मनो माखियन मटकी कान फोरन। जद सिर दे विच सोटा वजे आ ते उदे विचो मगध दियां छिट्टां इंज बार आईयां जिवें के भगवान कृष्ण ने अपनी मां दी मखन वाली मटकी फोड़ दित्ती होवे।

मुदकर सौ साहन पजो संग लेके सुसारी सुपाहन। सतगुरु कहते ने ये अपने आप नू बड़े सूरबीर अखवांदे सन, लेकिन मेरे सूरबीरां दे सामने इना दे पासो एक तीर भी ना चलिया, इथों तक के अपनी सेना दी जान बचांदे जंग विचों न

भगत नामदेव जी इस शब्द दे विच जिस थीम नू असी अज आरंभ करना है, जिस विचार दी लड़ी आरंभ करनी है, वो है नाम। ते भगत नामदेव जी अपने जीवन का जो निचोड़ है वो दस रहे हैं, ताकि सानू भगत जी के इन शब्दों के द्वारा कोई डायरेक्शन मिल सके, कोई समझ प्राप्त हो सके। कहते हैं, मैं अंधलहे की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं अन्ना हां, अंधा हां, पर तेरे नाम की स्टिक जो है, तेरे नाम की जो छड़ी है, वो मेरा आसरा है। पाप के तेरे नाम की मैनू सपोर्ट है, तेरा नाम मेरा सहारा है। पाप के तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम की छड़ी हाथ च होने तो बिना मैं एक कदम भी चल नहीं सकता। जीवन दे विच अत्यंत खड्डे हन, टोए हन, उतराव चढ़ाव हन, उन्हां दे विच जद तक तेरे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच है, ओ मेरा अंधले दा आसरा, तेरा नाम खुंदकारा। फिर आखते हैं, मैं गरीब, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मस्कीन, बिल्कुल जो खाली हो, जिसके पास कुछ ना हो। पर कहते हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही गरीब हूं, क्योंकि तेरा नाम है आधारा, तेरा नाम मेरा आधार है। तेरे नाम तो बिना मैं अपने आप नू गरीब और मस्कीन समझांगा, पर जब तेरा नाम मेरे पास है फिर मैं गरीब नहीं रह जांदा, क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी बाणी च आखदे हन

0: दुख पेन सफरिंग मिजरी कहते कहते जहर है लाइफ च पॉइजन है दुख मोहरा मोहरा मैंने पॉइजन जितने भी साड़ी लाइफ च पेन है मिजरी है दर्द है सफरिंग है वो कहते जहर है हुण उस जहर का इलाज की है मारन लफज वरत्या है मारन का मतलब हुंदा मसाले पाके दवाई जो तैयार की जाए अर्ब्स वगैरह पाके जो दवाई तैयार की जाए कहते उस मारन आके अगर पेन एंड सफरिंग लाइफ के पॉइजन है तो उस पॉइजन केड़ी चीज मार सकती है बहुत ज्यादा ध्यान दो ट्राई टू बी फोकस्ड दुख मोहरा दुख जहर है उस जहर नू मारन दे वास्ते ए बड़िया इनकरेजिंग लाइन्स हन इन द सेंस कि जिस किसे इंसान की जिंदगी अत दुख है सफरिंग है मिजरीज हन उदे वास्ते एक सोल्यूशन दसया जा रहा है एक वे आउट है एक होपलेसनेस सिचुएशन दे विच एक होप दिखाई जा रही है कि तुहानू वरीड होने की लोड़ नहीं चिंता करने की लोड़ नहीं अगर जिंदगी च पॉइजन आ गई है दुख दर्द परेशानियां आ गई हैं तो महाराज जी आखदे मारन मारन का मतलब मसाले पाके कीती हुई तैयार दवाई जड़ी दवाई है उस जहर नू मुका सकती है कहते हैं वो है हर नाम वाहिगुरु का नाम दुख महारा मारन हर नाम दुख नू मारन वाला शक्ति रखण वाला एक ही पदार्थ है वाहिगुरु का नाम सो नानक के कारण सारे बोलो केवल नाम इस पंक्ति नु याद करना है वी विल गो ऑन रिपीटिंग दिस लाइन एवरी डे नानक के कारण केवल नाम सो मैं तो बात बोल दिया करो कितने नाल कोई आप दिन थकावट नहीं हो जाएगी नानक के कारण दुनिया दे विच बहुत ज्यादा इग्नोरेंस है बहुत ज्यादा डार्कनेस है न समझी है अज्ञानता है तो महाराज जी ने पूछिए महाराज इतनी अज्ञानता है इतनी न समझी है इतना अंधेरा है तो आप जी दे कोल की इंतजाम है इस अंधेरे नू दूर करन दा चानन जगान दा तो गुरु महाराज जी आखदे हन
1: दीवा मेरा एक नाम
0: कहिंदे नाम ही एक ओ दीवा है जिहड़ा ह्यूमन लाइफ दे विच्चों डार्कनेस नू सोसाइटी दे विच्चों डार्कनेस नू पूरे ग्लोबल लेवल दे उत्ते डार्कनेस नू इग्नोरेंस नू इलिटरेसी नू जो दूर कर सकता है वो सिर्फ नाम दा दीवा है कहते मैं नाम दा दीवा लेके आया अते आप देखते हो जब दीवा बलदा है तो आहिस्ता आहिस्ता केड़ी चीज है जड़ी बर्न हो जाती है जड़ी सोख हो जाती है जड़ी खत्म हुंदी है वो तेल हुंदा है तेल खत्म हुंदा जांदा है महाराज जी आखदे ने साड़ी सारी जिंदगी दे जड़े दुख हन उन्हां नू समझो तेल विच नाम दा दीवा जगा दो नाम दी बत्ती जगा दो नाम दी बत्ती सारे ही दुखां नू बर्न करके रख देगी जिस तरह जगदा होया दीवा तेल नू बर्न कर दे

नाम जपण तो बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। सो इतों अच समझ लेना चाहिए और समझ के अपनी डायरेक्शन भी मोड़ लेनी चाहिए है। मेरा सुनना ही नहीं चाहिए, अमल भी करना चाहिए। अगर असी नाम जप रहे हैं तो समझ लो असी पूजा कर रहे हैं। अगर असी रोजाना नाम नहीं जप रहे तो कोई पूजा नहीं कर रहे। बाबा जी अगर पूजा कीचे नाम ते आइए बिन नावे पूज ना हो। महाराज जी आप जी का तीर्थां दे संबंध की ख्याल है? स्पिरिचुअल क्वेस्ट दे विच इनलाइटनमेंट अटेन करने वास्ते, दुखां दा छुटकारा पाउण दे वास्ते लोग तीर्थां ते जांदे हन, पिलग्रिमेजेस ते जांदे हन, जिन्हां नूं होली प्लेसेस आख्या जांदा है। इज देयर इज सच थिंग? महाराज जी आखदे हन साडे वास्ते नाम जपना ही तीर्थ ते जाना है, क्योंकि जो नाम जपेगा वो खुद ही तीर्थ बन जाएगा, खुद ही तीर्थ बन जाएगा। तो साडे वास्ते तीर्थ ते जाना भी नाम जपना ही। कहते हैं तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ भी नाम है।

ट्राई टू रिमेंबर दिस लाइन, नाम हमारे गुरु की से, क्योंकि गुरु की सेवा दे वास्ते बहुत ही कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो इवॉल्व होना चाहिए, नहीं तो इंसान थां से सेवा करने की बजाय बेअदबी करी जाएगा, गुस्ताखी करी जाएगा और सेवा करने के नाल हौमे वधाई जाएगा। पर नाम है जो उसकी आत्मक अवस्था नू उच्चा उठाएगा, हंकार नू मिटेगा, अते उस दे विच ही सिर्फ गुरु की खुशी है, और किसे गल च गुरु की खुशी नहीं। हुण तक आप जी ने यह सुनया, भगत नामदेव जी आखते हैं नाम मैं अंधा हां, जीवन दे रस्ते उत्ते जे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच नहीं है तो मैं चल नहीं सकता, किते पहुंच नहीं सकता। नाम कहने मेरे जीवन का आधार। गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दे बाणी दे विचों जो मैं प्रमाण दिते हैं वो ये कहते हैं कि नाम ही नाम है साडे घर दे विच, नानक के घर भूल गयो केवल नाम, नानक के घर केवल नाम, कहने साडे घर च सिर्फ केवल नाम है और कुछ नहीं। नानक के घर केवल नाम, नानक दे घर दे विच सुप्रीम टेक्निक जो है, मेथड जो है, वे जो है वो सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जना उधरे सारा संसार रोगी है, उसका एक ही दारू है, एक ही इलाज है, वो की है नाम। संसार दे विच बहुत इग्नोरेंस है, अंधेरा है, तो दीवा की है नाम। लोग अत्यंत लोग तीर्थां ते तुरे फिरदे हन, गुरु जी महाराज कहते हैं तीर्थ भी नाम ही है, नाम जपना ही तीर्थ इश्नान है, नाम जपना ही तीर्थ इश्नान है। कहते नाम ही साडे वास्ते वेद शास्त्र है, नाम ही साडे वास्ते, नाम जपना ही रब की पूजा है, अते नाम जपना ही गुरु की सेवा है। सो ए है नाम की इंपॉर्टेंस, समा समाप्त है। आज सिर्फ उस विचार नू साढ़े आठ तक आते सो हुण तक असा यह सुनया है कीर्तन का पहला हिस्सा कि गुरु बाबा जी दे घर दे विच केवल नाम है, नाम ही दवाई है, नाम ही दीवा है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही पूजा है, नाम जपना ही सेवा है। तो आओ प्यार नाल एक दफा उस पंक्ति नूं हुण गाइए, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं अंधले दी टेक छड़ी सोटी, कहिंदे ओ वाहिगुरु तेरा नाम है उस तो बिना मैं चल नहीं सकता, अते जो वाहिगुरु दे उस नाम दी छड़ी तो बिना चलने की कोशिश करते हैं वो गिटे गोडे जरूर तोड़ाणगे, वह गिरणगे, चोटा खाणगे। सो आओ वाहिगुरु जी दे नाम नू अपना आसरा बनाइए, समझिए, गाइए, फिर कीर्तन का थोड़ा जा अगला हिस्सा मैं आपकी सेवा रखांगा।

अपने मन व्यक्तियों जोड़ के फोकस करके रखो और उस सारी की सारी विचार अपने अंदर टिका के रखो जो सुने। इतना कुछ सुनने तो बाद नानक के कर केवल नाम, नाम ही तीर्थ, नाम ही पूजा है, नाम ही रोगानु खत्म करने वाली दवाई है, नाम ही जो दुख मिजरी सफरिंग जहर हैं साड़ी जिंदगी उन्हों का इलाज है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही गुरु की सेवा है। इस तो बाद जो ट्रूली एक सीकर है उसके मन दे विच ये जो एक अजीब मिस्टीरियस वंडरफुल मिराकुलस इनवैल्यूएबल वस्तु है नाम, उसनु प्राप्त करने की इच्छा जागती कि किवें मैनू प्राप्त हो, जो कि तमाम चीजों का इलाज है, किवें मैनू प्राप्त हो। उस दे वास्ते इंसान के अंदर कितनी लॉन्गिंग चाहिए है, कितनी बर्निंग डिजायर चाहिए है, कितनी तीव्र इच्छा चाहिए है। जे इच्छा नहीं है, जो तड़प नहीं है, तो फिर वो वस्तु मिल नहीं सकती। गुरु महाराज जी का एक शब्द है, श्लोक है, जिस दे विच गुरु महाराज जी आखते हैं मेरी जो मैं सीख रहा नाम दा, अते मेरी सीकिंग दे विच जो इंटेंसिटी है उसनु देखो कितनी है। वो इतनी है कि जितनी देर तक वो नाम ना मिल जाए वो रज ही नहीं सकती, वो सेटल हो ही नहीं सकती, उसनु चैन आ ही नहीं सकता, वो टिक नहीं सकती। कहते हैं जिस तरह मिसाल उन्होंने तीन चार बहुत खूबसूरत दिखाई हैं, कहते हैं

तू कोटिया तो वढ़ना शुरू कर, मैं पाठ शुरू करना। मैं पानी का आनंद लेना, तू कतल करन दा स्वाद ले, मैं जीन दा स्वाद बड़ा ले लिया, अज मरन दा स्वाद लैन नू जी करदा। उस भीड़ विच एक सैयद सूफी फकीर खड़ा सी, उन्हें भाई साहब की ए गल सुनी ते हैरान हुई, बाहां उचियां करके कहन लगा, ई बंदा खुदा खाकी नेस्त, कहंदा ए बंदा ए रब दा बंदा मिट्टी दा तां नहीं हो सकदा, आम मनुखां दी मिट्टी ए बंदे दी नहीं है। कैसी गल है, ए मरण चो भी स्वाद लेना चाहुंदा, ए बिल्कुल सत है। रब नाल जुड़िया होया, ईश्वर नाल इक सुर होया, बंदा जीवन दा भी रस लैंदा, मौत दा भी रस लैंदा।

प्यास लगी, पानी दी पाल की थी, एक खूह नजर आया। उस खूह दे कोल जदू गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन, क्योंकि पानी बहुत नीवा सी। खूह दे विचों ओह पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल। पानी देखिया बहुत डूंगा है, बहुत नीवा है। पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं। ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंचे हुए महापुरुष सन, अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे, पानी पीता। पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए, चेलिया नू पियाया, कुछ लोकां नू भी पियाया ते नामदेव नू कहा, नामदेव तू भी पानी पी ले। नामदेव जी कहन लगे, मैं पानी नहीं पीना जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे, फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है, तू भी भगत है, तेरे विच भी शक्ति है, तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू, मैं पानी तां पीना जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे, नहीं तां मैं पानी नहीं पीना, क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनदा कि ओ साडी प्यास बुझावे। ए कह के नामदेव जी उसे खूह दे कोल

मारवाड़ जिस तरह मारवाड़ देश विच नीर कहंदे ने पानी पानी दे नाल लोक प्रीत करदे ने बेल बालहा कर हला और जिस तरह

जिथे अंब लगा हुए कोकल जा बैठदी अते खुशी दे नाल गान लग पैंदी ए। इसे तरह मेरे रमैया जिवें धरती पानी नाल प्यार करदी ए बरसात नाल, पवरा फुल दे नाल, कोकल अंब दे नाल।

मान सरोवर हंसला हंस जेड़े ने मान सरोवर नाल प्रीत करदे ने मान सरोवर ते रहंदे ने। भगत नामदेव जी बयान करदे ने चकवी को जैसे सूर बाल है, चकवी जिस तरह सूर दे नाल

तरनी के औरत नु कांत पति जिस तरह औरत पति नाल प्रीत कर दी, इसे तरह है परमेश्वर मेरे रमैया।

से खीर बाल हा जिवें बच्चा खीर के दुध नु दुध दे नाल प्रीत करदा है चातृक मुख जैसे जल तरा।

जिस तरह तू है इस तरह इस नामे दे मानवे च भी ए परमेश्वर तू है गए। ए नामदेव भी तेरे नाल इन्ना प्यार कर दे जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होने।

बनारस रहा करते सन। किसी ने पूछिया कबीर तेरा गुरु कौन है, कबीर साहब कहन लगे गुरु मैं ता किसे नु गुरु तारिया नहीं। ता उस के जिदा गुरु नहीं ओदी गति नहीं हुंदी, कबीर तू गुरु जरूर तारन कर। कबीर साहब कहन लगे फिर गुरु किड़ा है ऐस वेले जेड़ा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होवे, उस नू मैं गुरु धारण करा। तां दसन वाले ने कहा कबीर स्वामी रामानंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हैं, ओ गुरु तारण दे लायक ने, तू उन्हां कोल चलिया जा। पर एक गल है, स्वामी रामानंद ऊंची जात दे ने, तू है जुलाया नीवी जात दा। स्वामी जी दे चेलिया ने तेनू स्वामी दे लागे नहीं लगन देना, पर एक तरीका है, स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के गंगा ते इशनान करन जांदे नहीं। जे तेनू गुरु दी लोड़ है अमृत वेले उठ, जेड़िया पौड़ियां गंगा दियां स्वामी जी उतरदे ने उन्हां पौड़ियां ते जाके लम्मा पै जा जे तेनू गुरु दी लोड़ है। ए सुन के कबीर साहब कहन लगे ठीक है, क्योंकि गुरु दी लोड़ सी। कहन लगे मैं अमृत वेले उस रस्ते ते जाके लम्मा पै जावांगा जिस रस्ते तो स्वामी रामानंद रोज सवेरे अमृत वेले गंगा इशनान करन जांदे ने। रात पई पर कबीर साहब नूं नींदर नहीं आ रही, क्योंकि गुरु दी लोड़ है, ते जिनू गुरु दी लोड़ होवे उनू दुनिया भुल जांदी है। दो ही गल्ला ने, या दुनिया खुश कर लीए या गुरु नूं खुश कर लीए। जे ता गुरु नूं खुश करना है ते फिर दुनिया दा त्याग करना पवेगा। दुनिया दा त्याग घर बार छड़ के नहीं, घर बार तियां पुत्रां माया विच रहिंदिया होया परमेश्वर नूं याद करना, माया विच रहिंदिया होया माया दे उत्ते काबू पा के रखना, मोह माया तो उत्ते उठ के रहना, ए दुनिया दा त्याग हुंदा है। दुनिया छड़ के जंगलां विच जाना कोई त्याग नहीं। कबीर साहब कहन लगे मैनू गुरु दी लोड़ है। आप अधी रात हुई घरों उठे ते गंगा

0: कबीर साहब नू गुरु दी लोड़ है। अधी रात घरों उठे गंगा घाट जा पहुंचे, जिहड़ियां पौड़ियां तो स्वामी रामानंद उतरिया करदे सन। कबीर साहब मूह सिर लवेट के उन्हां पौड़ियां ते जाके लम्मे पै गए। इस कथा नू भाई गुरुदास जी ने अपनी पौड़ी दे विच बयान कीता है। आप स्वामी रामानंद बारे यूं अपनी पौड़ी विच लिखदे हन।
1: होए बिरक्त बिलासी रहंदा रामानंद गुसाई।
0: बनारस दे विच रामानंद गुसाई रहा करदे सन।

अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नहावण ताई स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के रोजाना ही गंगा इशनान करना।

बड़ी मस्ती विच राम राम करदे तुरे आ रहे ने। गंगा दियां पौड़ियां उतरन लगे, देखे आ पौड़ियां दे विचकार कोई सुता होया है। रस्ता नहीं सी क्योंकि कबीर लम्मा पिया सी। स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी ठोकर लाए कबीर दे शरीर नू। ते कहंदे ने भांडे विच जेड़ी चीज पाई होवे ओही निकलदी। जे किसे भांडे विच दुध पाया है तां दुध ही निकलेगा। जे किसे भांडे विच शराब पाई है तां शराब निकलेगी। पर जेड़े महापुरुष ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है तां नाम ही निकलना। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू, ते नाले के उठ राम के राम कहो, ए सौण दा वेला नहीं, ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आ बयान करदे ने।

ऐसा असर हो गया। स्वामी रामानंद पैर लगा के एक कहन दा के उठ राम के राम को पाए। गुरुदास जी कहंदे ने राम कबीरे भेद ना पाई, राम विच ते कबीर विच कोई फर्क ना रहा। इशनान करके स्वामी रामानंद चले गए। कुछ समय बाद कबीर साहब स्वामी रामानंद दे आश्रम वाल तुर पए। स्वामी रामानंद जदू इशनान करके जांदे सन, दरवाजा ढो के चौंकड़ा मार लेंदे सन और मन करके परमेश्वर नू इशनान कराया करदे सन। इशनान कराण अज भी बैठे मन करके, कपड़े भी पवाए, सिर ते ताज भी रखे, मुकट कलगी भी रखी, पर हार पाना भुल गए। कबीर साहब स्वामी रामानंद के दरवाजे के बाहर बैठे। उस पासे स्वामी रामानंद सिर ते मुकट रख बैठे, ता ख्याल आया कि मना हार ते गल विच पाया नहीं, हार जो तक ना पावा पूजा पूरी नहीं होनी, जे ता हार मुकट ला के पावा ताई सोभा वाली गल नहीं, मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकदा क्योंकि हार छोटा है। ते चिंता विच नहीं कि सिर ते सजाया मुकट लाना ठीक नहीं, ते मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकदा, किवें करा। ता कबीर साहब बाहर बैठे सन, उन्ना जान लिया कि स्वामी रामानंद क्यों परेशान ने, क्योंकि जिहड़े नाम जपदे ने उन्ना विच ते परमेश्वर विच भेद नहीं रहिंदा, ओ एक दूसरे दे मना दियां जानदे ने। ते कबीर साहब ने बाहरों कहा, स्वामी जी हार जी मुकट तो नहीं पै रहा, ते हार दी गंड खोल के हार गल विच पा के फिर गंड मार दियो। आवाज सुनी स्वामी रामानंद बड़े हैरान होए, उठ के बुआ खोलिया, बार कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे तू कौन है? कबीर साहब कहन लगे मैं कबीर हां, तुसा मैनू गुरु दीख्या दीती। स्वामी जी कहन लगे मैं ता तेनू गुरु दीख्या दीती नहीं, अपना चेला बनाया नहीं। ता कबीर साहब कहन लगे स्वामी जी तुसी गंगा ते अमृत वेले इशनान करन गए, मैं पौड़ियां ते लम्मा पिया सी, तुसा अपना चरण मेरे शरीर नू लाया ते कहा सी उठ राम के राम को, उदों दा मैं आप दा सेवक बने। ए सुन के ते स्वामी रामानंद कहन लगे कबीर तू सेवक नहीं, तू ते मेरे नालों भी अगे चला गया है, तेरे विच ते राम विच कोई फर्क नहीं रहा क्योंकि तू ते मेरे मन दी भी गल जान ली है। और स्वामी रामानंद जी दा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है, कत जाइए रे कर लागो रंग। ऐसा असर होया गुरु दे मिलन दा के कबीर विच ते राम विच कोई फर्क ना रहा।

चौकी ते रखे है, रोटी पकाई अते लस्सी रिड़की, लस्सी रोटियां ठाकुर दे अगे रख के ते तन्ना हाथ जोड़ के बैठ गया।

तीसरा दिन चढ़िया ते तन्ना कहन लगा हाँ भी मुंह ना जुटाल सा तू रुठा मैं क्यों ना सुखावे ऐ परमेश्वर जे तेरा धर्म है के पंडतां दे हत्थों खाना ते मैं भी जाटना फिर मेरी भी जिद है कि जदू तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी कुछ नहीं खाना तू मेरे नाल

0: परमेश्वर नु रोटी खवाई तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे लै भाई तन्ने आ रोटी तां असी खा ली हुण दस तैनू चाहिदा की है। तू याद कीता मैं आया हुण मंग तैनू की चाहिदा। तां तन्ने ने हाथ जोड़ ले कहन लगा भगवान मैनू ए नहीं पता कि अरदास किवें करी दीए। लोक तेरी आरती करदे ने पर मैं तेरा आरता करना। आप जी बयान करदे ने भगत अन्ना जी अपनी बाणी विच आप
1: गोपाल तेरा आरता।
0: गोपाल कहंदे ने दुनिया नू पालन वाला

0: चाहिए क्योंकि जिमीदार सी। पहली चंगी चाहिए, अनाज चंगा चाहिए, ताकि इन चीजा वालों मैं निश्चिंत होके तेरी बंदगी कर सका।
1: अनाज मंगो सत सीगा गौ।

पोड़ी नुके ऐ भगवान पैरी सोहनी जुती पाई होवे सोहना सूट पाया होवे घर विच अनाज भी होवे गां ते मझ भी होवे ते किधरे आना जाना पै जावे ते पैदल तुर के जांदा फिर आदमी चंगा नहीं लगता कपड़े चंगे पाए होन ते तुरिया जावे पैदल चंगा नहीं लगता आना जाना भी पैंदा है दूर इस करके कृपा कर एक ताजन तुरी चंगेरी एक सोहनी जी घोड़ी भी दे ताकि किधरे आना जाना होवे ता वो सफर मैं

और तीसरे सन गुरु अर्जुन देव जी महाराज हन। ए ता गुरु नानक दी मेर है कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज गुरु नानक दा रूप बन गए, पर पृथ्वी चंद जिन्हां दा सुभा माया वाला ईरखा वाला दुबदा वाला सी और महादेव उन्हां नूं किसे चीज दे नाल कोई मतलब नहीं सी। वड्डा भरा पृथ्वी चंद हर वेले गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाल ईरखा करया करदा सी। एक दिन दा जिक्र है, गुरु अर्जन देव जी महाराज दे तर्मस पत्नी माता गंगा जी जिन्ना ने वेड़े दे विच कीमती कपड़े कीमती समान रखे है, तो पुलवान वास्ते कपड़िया नूं पृथ्वी चंद जी दी घरवाली करम कौर उसने जद छत ते चढ़ के माता गंगा जी दे घर वल देखिया, रेशमी कपड़े गहने कीमती समान ते सड़ पल के कोले हो गई। करम कौर ए सारा कुछ देख के बर्दाश्त ना कर सकी, मंजी ते आके लम्मे पै गई। पृथ्वी चंद बाहरों आए, घरवाली नूं कहन लगे, करम कौरे उदास क्यों है? करम कौर कहन लगी पृथ्वी चंद नूं, अगर तुसी अपने पिता दा कहना मन्या हुंदा गुरु रामदास जी दा ते तुसी गुरु बनदे, पर ये सारा कुछ तुहानू मिलना सी, तुसी पिता दी आग्या नहीं मन्नी, सेवा सिमरन नहीं कीता ते ए गुरगद्दी तुहानू नहीं मिली, पर तुहाडा छोटा भरा गुरु अर्जन साहब जिन्हां ने सेवा सिमरन कीता हुक्म मन्निया ते गुरु नानक दी गद्दी दे मालक बन गए। पृथ्वी चंद करम कौर दी गल सुन के हसे। करम कौर पृथ्वी चंद नूं अपने घर दी छत ते लै गए और कहन लगे, ऐ देखो तुहाडे छोटे भरा गुरु अर्जुन साहब दा घर किन्ना कीमती समान होया, काश ये सब कुछ साडे कोल होंदा। पृथ्वी चंद हस पए और हस के उची सारी

और बाबा बुड्ढा जी, आज आप अपनी जगह तो उठ के अगा हुए और पज के माता गंगा जी दे सिर तो प्रसादे अते लस्सी दी चाड़ी

जैसे एक जननी कै होत हैं अनेक सुत, सभी में अधिक प्यारो सुत गोद को, स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत एक संपैना सुहेद को, स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत हेत संपैना सुहेद को।

सदाए पैरी पैपा खाकोए गुरमुख गुरसिख आप गवाए साध संगत पौ पाओ कर सेवक सेवा कार कमाए मिठा बोलन निव चलन हथों दे कै भला मनाए शब्द सुरत लिवलीन होए दरगै मान निमाणा पाए।

गुरुमुख पैर सकार थे, गुरुमुख मार्ग चाल चलंदे, गुरुद्वारे जान चल, साध संगत चल जाए बहंदे। तावन पर उपकार नो गुरु सिखा नो खोज लहंदे, दुबदा पंथ न तावनी माया विच उदास रहंदे।